0: ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 3150-235 ਰੈੱਡ ਐਂਬਰਸ ਵੇ।
1: ਛੇਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 445 ਕੈਰਿੰਗਟਨ ਬੁਲੇਵਰਡ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
0: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
1: 403-835-2222।
2: सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब या अली मुद्दा मैं आपको होस्ट जलाल आपकी खिदमत में हाजिर। आप सब सुन रहे हैं कॉफी जलाल ऑन रेडियो संगम 94.7 एफएम। आज ये वेडनेसडे का दिन है तो आज जो है कॉफी जलाल के डब्ल्यूजे स्पॉटलाइट का दिन है और आज का हमारा जो सेगमेंट वो भी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी मेरे पास बहुत ही अच्छे दो दोस्त आए हैं जिनका एक इवेंट होने जा रहा है एड्री में। यस, हमारे एड्री के बहन भाई जो हमें सुन रहे हैं, आई एम श्योर यू कैन जो है यू कैन हियर अस ऑल द वे इन एड्री। तो आपका इवेंट होने जा रहा है, इनके बारे में जो है हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त यहाँ पर मौजूद है, हमारे आसिम भाई एंड तनवीर ताज यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों दे विल जो है टेल अस कि एड्री में एक वॉक होने जा रही है, वो क्यों है, क्या है, कब है और आप किस तरह उसका हिस्सा बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तनवीर भाई आसिम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग दोनों? थोड़ा नजर आ रही है आसिम भाई, थैंक यू। तो अपना आसिम भाई, यू नो लेट्स स्टार्ट विद वो आपका इंट्रो अपना हुज आसिम एंड हुज तनवीर।
3: जी, माय नेम इज आसिम हनीफ और मैं एड्री में पिछले कुछ 4 साल से रह रहा हूँ।
2: अच्छा, माशाल्लाह।
3: मेरा जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है।
2: ओह नाइस।
3: और मैं, मेरी अपनी कंपनी भी है 3 एप्पल सिस्टम्स के नाम से, हम स्कूल और कॉलेजेस के लिए जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं।
2: अच्छा, माशाल्लाह, मुबारक मुबारक। तो आप कहाँ से? कराची से? पाकिस्तान से? लाहौर से, पाकिस्तान। अच्छा अच्छा, वैसे लाहौर की नहीं आ रही अच्छी होती कि कराची की नहीं आ रही?
3: मैं तो लाहौरी हूँ तो मुझे तो लाहौरी
2: पसंद है। तनवीर भाई कैसे?
4: नहीं, निहारी कराची की है,
2: कराची की।
4: लाहौरी लाहौरी जो हमारे, तो आपको पता है हम नाश्ते में कुछ और चीजें खाने वाले हैं।
2: yes.
4: श्री पाए और ये वो खाने वाले हैं, हम कहा ये निहारी वेरी खाते हैं। लेकिन निहारी जो अंदरून में बनती है, अंदरून लाहौर में, वो पुराने इस वक्तों से बनी आ रही
2: है। अब मैंने परसों मैंने देखा वसीम अकरम ने कहा कि आज मैं बहुत जो है अपना सच कहने वाला हूँ, किसी को जो है खराब ना लगे, मैं अपना लाहौर में बहुत रहा हूँ, पिछले 4 तकरीबन 15-10 साल से कराची में रह रहा हूँ। खाने का अगर आप देखें, लाहौर का खाना बहुत अच्छा है लेकिन बहुत मिर्चे।
4: ये आप तक ये 6 महीने बाद पहुंची बात?
2: पता नहीं, मैंने तो यार 2 दिन पहले देखा।
4: वो तो उनकी लड़ाई बड़ाई खत्म
2: और कहा कि अगर देखें जो है कराची में, वहाँ खाना बहुत अच्छा लगता है।
4: खाने कराची देखिए, जैसे हमारे यहाँ एक दिल्ली सेंटर था ना, ईस्ट से भी आ रहे हैं, वेस्ट से भी आ रहे हैं, साउथ से भी आ रहे हैं, इसी तरह बॉम्बे
2: जी।
4: तो वहाँ के खानों में जो चीज रच पस गई वो हर तरफ से आने वाले लोगों की। और कराची कोस्टल शहर होने की वजह से फिर जो महाजरीन का बड़ा एक तबका आया जो
2: जी
4: वगैरह से आया
2: जी,
4: वो अपने साथ वहां के जो खाने लेके आया है, उन्होंने लोकल जो मुकामी कुजीन थी उसको टेक ओवर कर लिया, सिंधी कुजीन को।
2: अच्छा,
4: कुजीन आपकी जो गुजराती जो कुजीन है उसको
2: जी जी जी,
4: फिर पारसी कुजीन को वो टेक ओवर करके, तो वो राजे बने हुए वहां के। लेकिन कराची के खाने अच्छे, मैं कराची के शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। कराची के खाने मजा तो शाम की ठंडी ठंडी हवा के
2: साथ। यस यस यस,
4: कहीं और नहीं मिलता,
2: कहीं और नहीं मिलता, बिल्कुल बिल्कुल। तनवीर भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, बहुत अच्छा लगा आपको एक बार फिर से देख के। और आपको, आप भी एडी में काफी टाइम से रह रहे हैं?
4: मुझे 8 साल हो गए।
2: 8 साल हो गए आपको? और आपको 4 साल में?
4: आजकल में 8 साल हो गए।
2: आज माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो वॉक होने जा रही है आसिम भाई, थोड़ा बताए इसके बारे में कि क्या है, कब हो रही है और ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है सब?
3: जी, ये जो हमारी वॉक है ये सितंबर 27 को
2: जी
3: एड्री में नोज क्रीक पार्क में ये हो रही है।
2: अच्छा,
3: और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो सुबह 9:30 पे स्टार्ट होगी। इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, एक तो हम 8 किलोमीटर्स की रन है, 4 किलोमीटर्स की रन है,
2: ओके,
3: और जो है ना 2 किलोमीटर्स की वॉक है।
2: ठीक है,
3: वॉक हमने इसलिए रखी है कि इसको हम फैमिली इवेंट जो है ना वो बनाना चाहते हैं, और ताकि जो लोग जो रनर्स नहीं है लेकिन वो फैमिली के साथ आउट गेट टुगेदर करना चाहते हैं, आउटिंग करना चाहते हैं, तो वो भी इस इवेंट में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस रन में ये हमारा सेकंड एनुअल रन है।
2: अच्छा,
3: फर्स्ट रन जो था वो हमारा लास्ट ईयर हुआ था, और उसमें हमने एक चैरिटी के, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रेजिंग की थी, और इस जो रन में हम 3 ऑर्गेनाइजेशन के लिए रन कर फंड रेजिंग कर रहे हैं।
2: Achha.
3: That is Adri Food Bank, then we are doing it for Community Links, and then Adri Health Foundation. So, these 3 organizations.

0: हैं जिनके लिए हम फंड रेजिंग कर रहे हैं
1: जी.
0: और इसमें यह है कि ऑलमोस्ट 100% जो डोनेशंस होंगी
1: जी.
0: वो जाएंगी टूवर्ड्स दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड वी विल नॉट कीप लाइक यू नो एनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और एनीथिंग.
1: अच्छा, तो आप ये जो कर फंड रेज किसी और के लिए कर रहे हैं आप लोग?
0: जी जी.
1: ओ माशाल्लाह.
0: हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जमात की, उसमें है मजलिस अंसारुल्लाह.
1: ओके.
0: जो कि हमारी जमात की 40 ईयर से जो ऊपर के जो मर्द हैं
1: जी.
0: उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है.
1: अच्छा.
0: और इसकी जो हमारा जो डिपार्टमेंट है मर्सी फॉर ह्यूमैनिटी, उसके तहत जो है ना हम कनाडा में 7 रन जो है ना वो इस साल हमने मुनक्किद किए हैं. लास्ट वीक हमारी 3 रन हुई हैं लॉयड मिनिस्टर में, एडमिंटन में और विनीपेग में
1: जी.
0: कमिंग वीकेंड में हमारी जो है वो रन हो रही है विंडसर में, और सितंबर 27 को जो है ना वो एड्री में रन हो रही है.
1: लाइक
2: इट्स पार्ट ऑफ 19 को कैलगरी में भी
0: जी. 20th को जो है वो कैलगरी में भी हो रही है.
1: अच्छा.
0: सो इट्स लाइक वी आर ऑर्गेनाइजिंग 7 रन्स दिस ईयर.
1: ओके.
0: एंड रेजिंग फंड्स लाइक यू नो फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस.
1: ओह दैट्स वेरी नाइस.
0: ऑल ओवर कनाडा.
1: ठीक ठीक. तो तरीन भाई, तो ये अपना 25 को रही, राइट?
0: 27.
1: तो उसका एड्रेस वगैरह बताएं और कितने बजे लोगों को पहुंचना है.
2: जी, मैं उसके ज़्यादा थोड़ी सी ऐड कर दूं हिस्ट्री
1: जी.
2: हमने ये जो रन्स हैं जमात के अंदर, हमने 2003 में शुरू किया था वान से, फॉर वान हॉस्पिटल.
1: अच्छा.
2: तो वान से शुरू किया, फिर 2010 में मैं जब मुझे हुक्म मिला कैलगरी में
1: जी,
2: मैं कैलगरी में फिर सारी जो अरेंजमेंट की थी. अब लास्ट ईयर तो मैं अवेलेबल नहीं था
1: जी.
2: अब इस साल मैंने शुरू किया तो मैंने कहा भाई अब जो मेरी खदमात हासिल करें
1: जी जी जी
2: चीजों में मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ
1: जी.
2: तो सिंस 23 साल हो गए, जैसे बताया कि नेक्स्ट वीक में यहाँ कैलगरी में है
1: जी.
2: अच्छा, ये होगी नोज क्रीक पार्क.
1: नोज क्रीक पार्क,
2: हाँ, मेन स्ट्रीट पे. और ये कैलगरी का एवरी का हार्ट है, दिल है उसका
1: जी.
2: बड़ा शानदार पार्क है, लेक और वो वाटर रिजर्वायर अच्छी जगह है पिकनिक के लिए, बच्चों के बैठने के लिए.
1: ठीक है.
2: तो इसमें ये तमाम जो रन है इसको कवर कर लेगा.
1: ठीक है.
2: है मेन स्ट्रीट के ऊपर,
1: मेन स्ट्रीट.
2: और 9:30 सुबह मॉर्निंग में हम शुरू करना चाहेंगे.
1: ठीक है. सो इट्स ऑन संडे सितंबर 27 एट नोस क्रीक रीजनल पार्क एड्री में होने जा रही है. तो यू नो इसका जो आपकी ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन को आप जिसको जैसे अपना अल्बर्टा एड्री फूड बैंक है और जितने ऑर्गेनाइजेशन को आप जो डोनेट करेंगे तो उनकी टीम भी वहां पर होगी
0: जी.
2: जी वो भी होगी.
1: तो उसमें अगर किसी ग्रुप को आना हो तो दे कैन मेक देयर ओन टीम, किसी को अगर वहां पे आना वॉक करने के लिए.
0: जी जी. उसमें ये है कि दिस इज ओपन फॉर एवरीवन. सो इसमें ये है कि जो अगर आप एज एन इंडिविजुअल अगर आप आते हैं तो आप जो हमारी वेबसाइट है runforadri.ca
1: okay.
0: जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं.
1: ठीक है.
0: इसके अलावा हमारे पास हमने 3 जो है वो हमारे पैकेजेस हैं फॉर कॉर्पोरेट डोनेशंस.
1: ओके.
0: उसके लिए फिर ये है कि हम वहाँ पे आप स्टॉल लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के विच कैटेगरी यू डोनेट फॉर.
1: राइट.
0: तो हमारा जो गोल्ड पैकेज है उसमें 5,000 एंड अबव है. जो हमारा सिल्वर है उसमें जो है वो 2500 टू 5000 है, और जो ब्रॉन्ज है वो 1000 to 2500 है. तो डिपेंडिंग ऑन जो भी आप कॉर्पोरेट डोनेशन पे पैकेज लेते हैं उसके मुताबिक आपको वहाँ पे स्टॉल दिया जाएगा. आपको आपका जो लोगो है वो हमारी वेबसाइट पे फॉर 1 ईयर डिस्प्ले रहेगा. इसके अलावा हम आपको वहाँ पे टी शर्ट देंगे, 10 T-shirts देंगे फॉर गोल्ड अकॉर्डिंगली जो है ना बाकियों को. और वहाँ पे आप स्टॉल भी लगा सकते हैं अपना.
1: अच्छा.
0: लाइक इट्स लाइक उस तरह से है सारा.
1: ठीक है ठीक है. तो यू नो इसमें कितने लोग होते हैं नॉर्मल, कितने हैं वो पास एक्सपीरियंस कितने लोग?
0: हमारा ये चूंकि सेकंड रन है, जो फर्स्ट रन था उसमें हमारे 150 के करीब लोग थे.
1: नाइस.
0: बट दिस इज अ सेकंड रन एंड वी स्टार्टेड लाइक यू नो क्वाइट बिट अर्ली. सो वी आर होपिंग के यू नो विल हैव गुड अटेंडेंस.
1: गुड. या या या.
0: लास्ट ईयर हमारे 80 रनर्स थे. तो वी आर एक्सपेक्टिंग के दिस ईयर वी गो लाइक यू नो 125 रनर्स.
1: Right.
0: We are also serving just, you know, for the sake of interest of like, you know, for our viewers.
1: Right.
0: Viewers. اور یہ لسنرز ہم اس میں صبح جو ہے نا 9:30 پہ پین کیکس کا بریک فاسٹ
1: اچھا پین کیک بریکفاسٹ بھی ہو دیٹس نائس یس یس یس
2: کھلا پلا کے مار لیں
1: کیا کھلا پلا کے ماریں گے
0: بالکل بالکل کھلائیں گے پھر بلائیں
1: گے جی جی جی تو ابھی جیسے ہم اپنا گیٹ دیٹ 9:30 اور جو ہے 9 o'clock بریک فاسٹ ہو گیا واک کے بعد کچھ

0: इसमें यह है कि जो हमारी जो एड्री की डेप्यूटी मेयर हैं शी विल बी रिप्रेजेंटिंग द सिटी एंड शी विल बी डूइंग अ पार्ट ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी
1: ओह नाइस ओके
0: यू नो गिविंग अवे प्लाक्स एंड रिकॉग्नाइजिंग द डोनर्स एंड ऑफ कोर्स वी विल बी हैंडिंग ओवर द प्राइजेस टू द विनर्स
1: अच्छा इसमें विनर्स भी होंगे
0: फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड जो तीनों कैटेगरीज हैं 8 किलोमीटर 4 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर तो उसमें हम प्राइजेस भी दे रहे हैं
1: ओह दैट्स वेरी नाइस तो ये तनवीर भाई कितना भागते हैं आपको पता है
0: तनवीर भाई अभी तो उनको कहा है कि वो लेके आएंगे भागने के लिए फिर इंशाल्लाह आगे
2: मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं 25 रनर अपने साथ लेके आऊँ
1: जी जी जी जी जी
2: मेरे रनर्स जो है वो जितनी जल्दी आते हैं कोशिश करते हैं कि हम
1: ओके ठीक है तो यू नो अभी जैसे एड्री में अगर आप थोड़ा डायरेक्शन होगा जैसे कोई एड्री से हम डियर फुट लेके जाते हैं कहाँ से या
2: एड्री में अब इस वक्त आपके 4 एग्जिट हैं फ्रॉम कैलगरी जो सेकंड एग्जिट है यांकी वैली बुलेवार्ड का
1: यस yes.
2: यहाँ से आप लेफ्ट करेंगे ऑन द बुलेवार्ड सेकंड आपका जो राइट है ये है मेन स्ट्रीट और नोस क्रीक जो प्रोविंशियल पार्क है रीजनल पार्क
1: है
2: ना ये नोस क्रीक रीजनल पार्क
1: जी
2: यहाँ इसके मेन स्ट्रीट के ऊपर है
1: आई
2: बिलीव इस पहला ही लेफ्ट है
1: ठीक है ओके फर्स्ट लेफ्ट
2: थोड़ा लेकिन ये के किलोमीटर एंड हाफ
1: जी जी
2: क्योंकि इसके साथ साथ ट्रैक चलता है ट्रेन ट्रैक
1: यस
2: फर्स्ट लेफ्ट जाता है कम्युनिटी में एक में छोटी सी एंड देन सेकंड लेफ्ट है इसका
1: ठीक है तो यू नो अभी जैसे हमारे कैलगरी में कितनी कम्युनिटी है कितने लोग बढ़ते जा रहे हैं आई एम श्योर कितने वासी में आजकल कितने लोग हैं हमारे
0: आई थिंक व्हेन आई लास्ट हर्ड 1.5 मिलियन तो है
2: किसकी बात करें पॉपुलेशन की या जमात की
1: नहीं एड्री में हमारे जो है जमात कितने लोग हैं
2: जमात के तकरीबन 540 550 के पास हैं और
1: जो है जनरल साउथ एशियन कम्युनिटी
2: आई बिलीव के मोर देन 5000
1: 5000
2: से ज्यादा होने चाहिए
1: yes, yes.
2: उसकी वजह ये है कि वहाँ पे नमाज जुमा जो होती है जो
1: जी
2: तीन जगह पे वो भरी होती है
1: माशाल्लाह
2: आम नमाजों पे भी होता है ये तो पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ
1: इसके
2: अलावा बाकी जो अफ्रीकन है वो बहुत है काफी हो गए हुए फिर हमारी जो पंजाबी पाकिस्तानी और इंडियन पंजाबी जो कम्युनिटी है खासतौर पे वो बहुत है गुजराती काफी हमारे दोस्त हैं वहाँ पे
1: नाइस नाइस
2: एटलीस्ट 5000
1: वाओ तो ये जो है यू आर लिसनिंग टू कॉफी जलाल ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM मेरे साथ अभी है तनवीर भाई एंड आसिम भाई जो कि अपना एड्री से आए हैं खास यहाँ पर इनका जो है सेकंड रन फॉर एड्री होने जा रही है दैट्स फॉर द चैरिटी वॉक एंड रन ऑन संडे सितंबर 27 एट नोस क्रीक रीजनल पार्क जो कि एड्री में है एंड इट स्टार्ट्स एट 9:30 विद ब्रेकफास्ट पैनकेक ब्रेकफास्ट आप लोग दो तीन दिन पहले नहीं दे सकते ब्रेकफास्ट मीडिया वालों को
2: सर आप उसके बाद भी दावत देते हैं उससे पहले भी दे देते हैं बाद में
1: जी जी जी यस यस व्हाई नॉट ऑफ कोर्स यू नो इट्स फॉर द चैरिटी अगर आप जाए यू नो बी द पार्ट ऑफ द वॉक और रन प्लस इफ यू नो डोनेट एनीथिंग अगर तो है तो दिस जो है दिस ईयर आप जो भी डोनेट करेंगे इट्स गोना गो टू 3 डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस नाम क्या उनके भाई एक बार फिर से बताएंगे
0: जी उनका नाम है एड्री फूड बैंक
1: जी
0: कम्युनिटी लिंक्स और एड्री हेल्थ फाउंडेशन एंड टू डोनेट यू कैन गो टू runforadri.ca
1: runforadri.ca एंड यू कैन डोनेट एनी अमाउंट यू वांट
0: एंड या आई मीन मिनिमम रजिस्ट्रेशन इज $25 अगर आप वो पे करेंगे तो आपको वहां पे हम आपको जब आप आएंगे तो आपको एक टी शर्ट देंगे
1: नाइस ना आपको ये रजिस्टर करना जरूरी है इफ यू आर कमिंग
0: well, I mean, as a fundraising organization, हम चाहेंगे कि आप register करें, लेकिन अगर आप
1: then you know how many numbers are coming, right?
0: Yeah, but if you want to come and just you know just have some good time with your family, you everyone is welcome to you know come and
1: spend time.
2: Open park है तो आप वैसे आ सकते हैं
1: और जब आजकल weather भी अच्छा हो रहा है
2: but अगर आप जैसे आसिम भाई ने बताया कि आप चैरिटी करेंगे या आपने अगर रन भी करना है 2 किलोमीटर की वॉक तो कुछ नहीं है
1: कुछ भी नहीं है
2: और वॉक भी है रन भी है तो उसमें क्या है कि आप रजिस्टर करें और उसमें आप पार्टिसिपेट भी करेंगे और आपको आई बिलीव के टैक्स डिडक्टेबल
1: दिस इज वेरी नाइस और जब भी आप सुबह वहां पे पहुंचे 9:30 ब्रेकफास्ट करें देन यू गो फॉर योर वॉक और योर रन इसके बाद आप

0: जाएंगे तो फिर जो है डिप्टी
1: मेयर जो है वो
0: डिप्टी मेयर फॉर द एड्री शी विल बी देयर एंड यू नो एंड जो शी विल क्लोज द इवेंट आई थिंक दिस इज रियली नाइस आई थिंक एड्री में आज कल कितने 80,000 लोग हैं ऑल टुगेदर
1: 100,000
0: हो गए
2: दो ऑफिशियल नंबर 100,000 को टच कर रहा है बट वो जो लास्ट ईयर की जो सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग
0: हमारे जितने भी कम्युनिटी है वहाँ पे आई थिंक दे ऑल डू समथिंग बिजी रहते हैं अच्छा यू नो इस तरह के काम इस तरह के जो चैरिटी काम होते हैं आई थिंक यू नो जो है हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू कि इट्स नॉट इजी टू डू वन इवेंट बल्कि इतनी बड़ी वॉक करेंगे देयर आर सो मेनी पीपल आर कमिंग ऑल द साइनिंग्स जर्सी लेना सबके लिए ब्रेकफास्ट करना इट्स नॉट इजी सो नो जो है कुरुस टू यू एंड योर जो है टीम आपके कोई स्पॉन्सर है यू वांट टू गिव देम एनी शाउट आउट टू एनीवन
1: जी आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर स्पॉन्सर्स जो कि अभी you know, हम अभी कर रहे हैं अभी बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उन्होंने प्लेजेस भी दिए हैं
0: nice.
1: तो उसमें आई वुड लाइक टू थैंक वुडक्राफ्ट किचन आई वुड लाइक टू थैंक एबीएम कॉलेज थ्री एप्पल सिस्टम्स एंड देन वी हैव कपल ऑफ लॉयर्स हु विल बी कंट्रीब्यूटिंग सो इनफैक्ट यू नो जो भी आप हमें हेल्प कर रहे हैं चाहे वो छोटी अमाउंट है या वो बड़ी अमाउंट है यू नो इट इज टूवर्ड्स गोइंग टूवर्ड्स अ गुड नोबल कॉज तो आप इसके अंदर जो भी आप हेल्प कर सकते हैं हमें आपकी हम जो ना वो इट विल गो अ लॉन्ग वे
0: यस यस यस अच्छा तनु आप कुछ बोले तनु भाई
2: मैं सही सब दोस्तों से जितने हमारे दोस्त हैं पाकिस्तानी हैं इंडियन सुन रहे हैं पंजाबी सुन रहे हैं गुजराती सुन रहे हैं जो भी इस वक्त आपको देख रहा है उन सबसे यही है कि जो करीब में है वो जरूर तशरीफ लेके आए
0: जी
2: ये सिर्फ रन नहीं है चैरिटी तो है ही है
0: जी
2: मस्ट नीडेड है इन दिनों में जो इकोनॉमिक सिचुएशन हुई है होपफुली विल गेट बेटर वेरी सून
0: यस
2: चीजों में जो लैग कर रहे हैं अभी लेकिन इसके अलावा ये एक अच्छा गेट टुगेदर है दोस्तों के साथ सीजन एंडिंग
0: आप आए मिले अपने दोस्तों से मिले जिनको जो है नॉर्मली वी डोंट सी ईच अदर
2: बिल्कुल
0: इवेंट होते हैं तो लोग आते हैं मिलते हैं साथ में वॉक करना हल्ला गुल्ला रहता है ये तो आती है अच्छे यू नो जितना मेंटल हेल्थ पे जितना जरूरी है आजकल इससे ज्यादा पहले कभी नहीं था तो इस तरह के आप बाहर निकलते हैं लोगों से मिलते हैं वो बहुत जरूरी है आजकल होपफुली एवरीवन विल गो एंड जो सपोर्ट द वॉक्स एंड देन यू नो सपोर्ट योरसेल्फ आप जाके अपने दोस्तों से मिले तनवीर भाई से मिले आसिम भाई से मिले आई थिंक यू नो दिस इज रियली नाइस कि आप जो लोगों से अपने मिले एंड होपफुली यू कैन बी पार्ट ऑफ एनी अगर आपको वॉलंटियर्स चाहिए आई एम श्योर जो पीपल कैन बी पार्ट ऑफ
1: वॉलंटियर भी चाहिए तो अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं तो आप अगर 9 AM तक वहाँ पार्क में आ जाते हैं न्यूज क्रीक पार्क में तो यू नो वी विल लव टू वर्क विद यू
0: नाइस हमें अभी जो सोनिया देख रही है रही मखानी फिर नीलम बेद भी बीनाशर जी जवेरिया जी भी हमें देख रही है फ्रॉम PCCA साक्षी भी अभी है उन्होंने ज्वाइन किया तो यार देयर आर सो मेनी पीपल आर वॉचिंग तो एड्री में होने जा रही है ये वॉक इज फॉर द चैरिटी इट कॉल्स सेकेंड एनुअल रन फॉर एड्री चैरिटी वॉक एंड रन इट्स ऑन September 27, 9:30 AM एट नोस क्रीक रीजनल पार्क वहां पर ब्रेकफास्ट के साथ शुरू होगी विच इज फ्री फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स और वहां पर जो है आपको इफ यू डोनेट एनीथिंग यू कैन डोनेट और तीन ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी डोनेशन इकट्ठा होगा इज गोना गो टू थ्री ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एड्री फूड बैंक कम्युनिटी लिंक्स एंड एड्री हेल्थ फाउंडेशन और फिर वहां पर डिप्टी मेयर भी वहां पर मौजूद होंगी सो इट्स अ विन विन सिचुएशन बड़ी तादाद में जितने होंगे तो हमारे लिए अच्छा लगेगा एज ए कम्युनिटी के यू नो कि इन्होंने इतना इवेंट किया इतनी मेहनत की और इतने लोग आए भी हैं आई थिंक ये जरूरी है कि हम जो है सिटी ऑफ एड्री को बताएं कि वी आर पार्ट ऑफ द सिटी एज वेल आई थिंक दिस इज ह्यूज अगर आपने डोनेट करना है यू कैन जस्ट गो to the website runforadri.ca you can donate and you can register your name as well aapko wahan par t-shirt bhi milegi and I think it'll be nice just to go just to get out of the house बहुत जरूरी है आजकल
2: मौसम भी ठीक हो गया
0: मौसम भी आजकल अच्छा चल रहा है यस यस मौसम भी आज का जो शो है कॉफी जुरा इसको स्पॉन्सर किया माई गुड फ्रेंड ऑप्टिमा आईवेयर एंड ऑप्टिमेटिक जो कि एड्री में भी है
2: जी
0: यस आवर गुड फ्रेंड शेजाद मियान साहब की है इनका फोन नंबर है 403-463-3000 फिर A to Z वैक्यूम आवर गुड फ्रेंड हनीफ माओजी अगर आपके पास डायसन वैक्यूम है सो ही इज द ओनली वन हु कैन आपको अगर आपने नया लेना सर्विस करना है सो ही विल बी एबल टू डू इट 403-207-4882 न्यू पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हरम बहुत अच्छी वहां की नली नियारी बहुत ही मशहूर है 403-629-6361 अवैश शोहेब साहब वहां के ओनर है फिर बोस्टन पिज्जा सेटलटाउन सर्कल जहां जो कि संजीव कैट का है और वहां पर हलाल ऑप्शंस भी अवेलेबल है 403-590-5503 अगर आपने मॉर्गेज लेनी है मोबाइल मॉर्गेज स्पेशलिस्ट

0: Alicia Binding, she works for the TD Bank and she is amazing. आपको बहुत अच्छे रेट भी देंगी. इनका फोन नंबर 4036819687. अगर आपने प्रिंटिंग करवानी कुछ भी और घर के लिए या तो फिर आपको जो आपके ऑफिस के लिए कुछ डिजाइन करवाना हो, शफीन जीवानी from the Casket Printing, 4032502202. I do all my printing there for all my events. तो अगर आपने करवानी हो, you can call शफीन 4032502202. Anything else? Did we miss anything?
1: नहीं, मेरे ख्याल में आपने चीजें तो सब कवर कर ली हैं इसमें.
0: जी,
1: लास्ट रिक्वेस्ट वही है कि आइए
0: आइए. यस, मेक श्योर बी देयर,
1: कीजिए इसमें.
0: यस यस, मेक श्योर बी देयर.
1: इसमें ये कि आप नॉन पेरिशेबल फूड ला सकते हैं उसके लिए,
0: उसके फूड बैंक
2: जी. हाँ जी, नॉन जी, वो फूड बैंक का भी वहाँ पे स्टॉल होगा. अगर यू नो नॉन पेरिशेबल आइटम्स अगर कोई ला सकते हैं तो वो भी आप ला सकते हैं.
0: जी,
2: इसके अलावा बस लास्ट में बस यही आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि दिस इज अ कम्युनिटी यू नो बिल्डिंग एफर्ट. प्लीज कम फॉरवर्ड, हेल्प यू नो द लोकल ऑर्गेनाइजेशन इन एड्री इन वॉट एवर वे यू कैन कम. इवन अ स्मॉल डोनेशन विल गो अ लॉन्ग वे.
0: एब्सोल्युटली. और सबको आप जो भी डोनेट करेंगे देन यू विल गेट योर रिसीट एज वेल. सो इट्स ऑल लीगल थिंग. कहीं कहीं और कहीं कुछ बाहर नहीं जा रहा. एंड यू विल गेट योर मनी बैक एज योर जो है टैक्स रिसीट. तनीर भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. गुड टू सी यू अगेन. आसिम भाई, थैंक यू सो मच. आपको ये पहली बार था, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो प्लीज लेट अस नो. लव टू हैव यू अगेन. कुछ भी आ रहा है आपका इवेंट,
1: डेफिनेटली दो तीन चीजें हैं.
0: या प्लीज, या एब्सोल्युटली,
1: एक दो प्रोग्राम है तो उसके बारे में
0: प्लीज
1: एडवांस में इतनी जल्दी नोटिस देने की बजाय थोड़ा सा और जल्दी दे दे.
0: ठीक है, फ्यूचर जो है एब्सोल्युटली जो है लेट मी नो एंड देन यू हैव सो इंशाल्लाह विल हैव यू बैक अगेन.
1: जी,
0: तो ये थे हमारे तनवीर भाई एंड आसिम भाई फ्रॉम एड्री, जो कि वॉक इंशाल्लाह सितंबर 27 को संडे के दिन है सुबह 9:30 एट नोस क्रिक पार्क विद द ब्रेकफास्ट एट 9:30 AM विच इज जो है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स. मेक श्योर बी देयर एंड सपोर्ट दिस अमेजिंग कॉज. तो लेते हैं छोटा सी ब्रेक. ब्रेक के बाद आई विल राइट बैक. मेरे साथ जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हमारे कैलकट के, सागर विल ज्वाइन मी, जो कि इनका एक इवेंट होने जा रहा है October 3rd को. इनका इवेंट होने जा रहा है एट मिर्ची रेस्टोरेंट, जिसको ऑर्गेनाइज किया है वन एंड ओनली कॉफी विद जलाल ने. यस, माई सेल्फ. तो आइए इंशाल्लाह जो है सागर से बात करेंगे के, और थोड़े ऑफ यू नो सो वी माइट लिसन कपल ऑफ सॉन्ग्स एज वेल फ्रॉम हिम. सो डोंट गो एनीवेयर. सो लेट मी टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मिलते हैं राइट हियर on Radio Susangam 94.7 FM. Thanks so much for listening and watching.
3: निगा वेलकम. फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इको छत हेठ. असी हफ्ते दे 6 दिन खुले हां ते ओ भी देर शाम तक. ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 5876174696 ओइसे स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी. 5876174696.
4: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो. किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट. सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे. साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण. ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते. पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां. पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो. तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी. पिक्सल फोटो स्टूडियो, जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार.
5: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है. होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है.
4: सुनो सुनो सुनो, ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा

0: यूएस से आ रही हैं जो अपना पहले आपको शी इज फ्रॉम कैलगरी वर लेकिन 10 साल से शी मूव टू यूएस तो ये पहली बार 10 साल के बाद आ रही हैं जस्ट डू द शो विथ ऑल द कैलगरियन जो उनके अपने फैंस हैं सो आई थिंक इट विल बी अमेजिंग इवेंट कैन नॉट वेट अगर आप 90s का और जो इसका जो थीम है कुछ कुछ होता है इज गोना बी जो है अपना अपने हिट्स ऑफ 90s जो कि बॉलीवुड के हिट्स ऑफ 90s है वो सारे चलेंगे और आई थिंक आई एम श्योर सागर विल बी इन द सेम बोट लाइक मी कौन से गाने हम गाएं या हम नहीं गाएं हजारों गाने जो 90s में हिट आफ्टर हिट आफ्टर हिट सागर लाइक आर यू गोइंग क्रेजी लाइक मी
1: Of course I am or it's been very very difficult for me to pick and choose which song to include which to exclude in fact Kumar Sanu himself mere idol he has been my idol unke khud ke hi 5 se 10000 gaane hain so it's very difficult to pick and choose which one should we include in there but any which ways we have tried our best to get all the you know jaise jo bhi wo dashak ke jo behtareen gaane the jo logon ko sun ke aisa lagega ki we are back in 90s
0: yeah
1: to we have selected such songs और या लोगों को बहुत मजा आने वाला है एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू नो सिंगिंग रैंडम सॉन्ग्स इट्स अबाउट ब्रिंगिंग दोज मेलोडीज बैक एंड स्पेशली जो कुमार सानू सर का जो सॉफ्टनेस है वॉइस की उदित नारायण सर का जो यू नो स्माइलिंग वॉइस है वो सब वापस लाने की हम लोग जरूर कोशिश करेंगे ट्राई माय बेस्ट एंड ऑफ कोर्स मून इज आल्सो देयर वेरी मेलोडियस सिंगर आई हैव परफॉर्म्ड क्वाइट अ फ्यू प्रोग्राम्स विद हर एंड ओ माय गॉड शी इज अमेजिंग
0: आई थिंक वी डिड खैर यूँ मुझे तो याद भी नहीं जब मून उसको भी 10 साल हो गए में कि कब वो पिछला शो साथ में हुआ था कि नहीं हुआ था बट एनीवेज बट नो आई थिंक दैट्स हिस्ट्री नॉट लेकिन नाउ शी इज कमिंग बैक फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 10 years ऑफ लाइक इन अ डेकेड एंड जो है सागर इज हियर एज वेल सागर यू नो पिछले 2 साल से आपको यू सेड यू वर मिसिंग इन एक्शन फैमिली थी बच्चे हुए एंड ऑफ कोर्स आई थिंक यू वर गोन अपना बैक होम एज वेल तो फिर to be in a current voice kya apna kya karna padta artist ko in general
1: well in general I would say agar wahi voice aapko barkarar rakhni hai in fact usse bhi zyada achhi karni hai to riyaz is the one thing that I have never stopped doing so 2 saal you know I was on the back foot family wagera ke sath but we were still singing right like hum log ghar pe practice karte hain I have my own system and everything so my daughters are so fond of music as well
0: acha nice okay
1: wife as well so practice chalu rahi hai meri in fact main aapne dekha bhi hoga facebook youtube pe main kuch kuch dalte bhi rehta hu
0: yes
1: so I get some time for myself but aisa nahi hua tha ki you know koi full fledged aisa show kare jahan pe we can have me as a lead singer moon as well so this is kind of you know it's exciting I'm very much excited for this event
0: and you know I think upar wale ki meharbani hai जो ऊपर वाले ने बहुत इज्जत दिया आई वोंट लाई कि जितना नेटवर्क जो ऊपर वाले ने दिया है यू नो फॉर टू जो है कॉफी जलाल को तो आपको दुनिया से लोग देखते हैं आई वोंट लाई तकरीबन 15-20 कंट्री से लोग देखते हैं हमारा शो और जब भी यू नो मैंने से जो है अपना KWJ वर्ल्ड स्टेज दिस वर्ल्ड स्टेज इसके दुनिया के लोग आपको देखते हैं यूएस टू कैनेडा टू रशिया टू मॉस्को टू पाकिस्तान इंडिया हांगकांग सिंगापुर जहाँ जहाँ हमारे जो फ्रेंड्स में इतना जो है अपना जो फॉलोअर्स हैं आई थिंक दिस इज ग्रेट आई थिंक आई एम हैप्पी कि जो है अपना यू आर सो एक्साइटेड आई कैन टेल कि और उस दिन जो लोग आएंगे आई एम श्योर कि दे विल एंजॉय एज वेल कि फिर यू नो इस तरह का थीम लाना इट्स नॉट ईजी और इस तरह का फिर वो इतने गाने गाना इट्स नॉट ईजी एज वेल आई थिंक वी आर इन फॉर अ ग्रेट ग्रेट अमेजिंग एंड इट्स एट द मिर्ची रेस्टोरेंट जो कि डिनर के साथ है जो है टिकट्स आर $40 फॉर द जनरल टिकट एंड ये $50 फॉर द रिजर्व / VIP टिकट्स एंड इट्स इंक्लूडिंग ये फूड इज लाइक द जो फुल डिनर इज वेल एंड द म्यूजिक पार्टी मिर्ची रेस्टोरेंट October 3rd डोर्स ओपन एट 6 PM एंड डिनर एट 6:30 गाइस यस डिनर एट 6:30 सो देन वी हैव इनफ टाइम फॉर द म्यूजिक ताकि हम जो रश ना करें हमारे दोनों आर्टिस्ट को कि अपना इनका हो नहीं रहा है कि कितना टाइम हुआ क्या नहीं है तो सो दे डोंट हैव वरी अबाउट इट कि कितना टाइम हुआ सागर यू नो If I take you back before pandemic, फिर ये तो ये क्या चेंजेस आई है आई नो लाइक वी टू डू ऑनलाइन शोज एज वेल ड्यूरिंग पैंडमिक इनसाइड एज अ आर्टिस्ट क्या चेंज है

0: கேட்கிறன். Oops, oops, kya baat hai. You know, Dar movies, of course. DDLJ. Phir aapne ne
1: Kuch Kuch Hota Hai,
0: the name of the movie. Phir wo apna Kabhi Alvida Na Kehna. Oh my God, itne naam hai.
1: So the list won't finish.
0: No, of course, jo hai, list won't finish. Isme se kaun sa gaana kare, kaun sa gaana na kare. And I think I sent you a couple of songs last week.
1: Yes, you did.
0: Wo maine suna, wala, yaar, ye, they, you know, then I listen. फिर मैं और भी सुना था मतलब यार ये भी होने चाहिए लेकिन यू नो हाउ मेनी सॉन्ग्स कैन यू डू राइट
1: एग्जैक्टली
0: नो आई थिंक इट्स गोना बी लॉट्स ऑफ फन लाइक आई सेड टिकट्स आर ओनली $40 and $50 हमारी बीना जी हमें देख रही है शी ऑलरेडी गॉट द टेबल फॉर 10 हमें मोहम्मद यासीन देख रहे हैं मिनिस्टर साहब हेलो एमएलए साहब कैसे हैं आप थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर एज वेल रिधि भी हमें देख रही है जो सागर की वाइफ है शी विल बी कमिंग एज वेल एंड मीनास लखानी मीनास भी हमें देख रहे हैं Hopefully you can join us on October 3rd, Saturday night. Doors open at 6 p.m. at Mirchi Restaurant Northeast. Sagar and Moon Ahmed, jo ki pehli baar aa rahi hai in 10 years, she's going to perform for the first time. You know, if I ask you, Sagar, you know, when I told you ke Moon ke saath karna, like, you know, what were your thoughts?
1: Very much obliged.
0: Yeah?
1: Moon ke saath perform karna is fabulous. Like, She knows her pitch, she knows her tone.
0: Yeah.
1: Itni melody jo songs ke andar hoti hai, wo she can pull that through.
0: Uh-huh.
1: Aur of course, charismatic personality, she can hold the crowd.
0: Yes.
1: So aisa lagta hai.

0: याद है.
1: That one.
2: That one. Oh, nice, nice, nice, nice. Or, you know, जो 90s में थे, you know, if you just look at the 90s era, जिसमें, of course, we are talking about, जो है कुमार सानू, उदित नारायण जी, सोनू निगम साहब, फिर उसमें रफी साहब भी थे, फिर उसमें किशोरदा भी थे, फिर उमेद साहब, लता जी भी, फिर आशा भोसले जी ने, ऑफकोर्स अलका याग्निक, और फिर वो साधना जी. ह्यूज लिस्ट थे सबके, सब सारे लेजेंड्स. फिर ऑफकोर्स जो श्रेया घोषाल स्टार्टेड एज वेल, तो सारे के सारे जो है अपना जो लेजेंड्स जो है उन्हीं का सारा ये दौर रहा है. आई थिंक जो है कैन नॉट वेट टू स्टार्ट द शो.
1: एब्सोल्युटली. स्पेशली अगर डीडीएलजे की बात करें तो लता मंगेशकर और उदित नारायण अलग अलग जनरेशन के सिंगर्स थे. दे सैंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स इन दैट मूवी. ओ माय गॉड, दैट केमिस्ट्री, दैट सॉन्ग कॉम्बिनेशन वाज अमेजिंग.
2: और फिर उसमें जो है आशिकी भी आई थी.
1: एब्सोल्युटली.
2: कुमार सानू के सारे का.
1: यस.
2: फिर आमिर खान के जो सारे हिट मूवीज थी वो भी आई थी. Oh my God, I think it's going to be an amazing show. October the 3rd ko hone ja raha hai. Ek baar phir se jo shout out to all my sponsors, jisme Country's Toyota and jo South Point Toyota as our title sponsor. Gold sponsors mein Casket Printing, Vasim Abbas Realtor, inka phone number 587-585-1356. Prime Ridge Construction, Residential or jo Commercial, 587-325-0011. And of course, Mirchi Restaurant. Phir hamare paas jo hai raffle draws bhi honge, jisko sponsor kya hai, Aiz by Bashir. फिर जो हमारे हैं हरम रेस्टोरेंट, और फिर ऑप्टिमा आईवेयर, मेमस्टर्स, बटकड़ाई, बॉस्टन पिज्जा, फिर जो मीडिया फोर्स, रेडियो सुसंगम एंड सलाम नमस्ते कैलगरी, एंड वीडियो प्रोमोस बाय आर एल आडा, हमारे फोटोग्राफर वन एंड ओनली सोहेल काशिफ, और साउंड होंगे वन एंड ओनली नवाज वालजी, या जिन्होंने पहले भी मेरे साथ जो है अपना, बल्कि एक्चुअली सर नवाज एंड Sagar did the show. Like, after we did the show.
1: We did this show together, yes, of
2: yes,
1: course.
2: For the Valentine 2 years
1: so
2: ago.
1: I remember Nawaz Bhai's sound management. Oh my God, amazing. Oh, mm-hmm. Aapke voice ke texture ke hisab se he will manage everything.
2: Yes,
1: so that's
2: yes,
1: how
2: yes.
1: professional he is.
2: He is, you know. He's too good. That's the problem.
1: Absolutely.
2: That's his problem.
1: Very knowledgeable.
2: Yeah, he's too good. that's very big problem. Anything you want to say before we go off?
1: Well, final words to all the audience. Thank you so much for, you know, buying all those tickets. We have a few tickets left, so please get yours very soon. Thank you to all the sponsors. Thank you, Calgary, and thank you, Jalal Bhai, for having us every time. You know, whenever I see Jalal Bhai's call on my, you know, caller ID, I'm like, something big.

रेडियो सुरसंगम 94.7 FM ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਅੱਜ 17 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋਗੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਨੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਓਨਰ ਹੋ ਟਰੱਕ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 587-832-1208 मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स ने इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर किया है जी कैनेडा की सब तो वड्डी डीलरशिप है स्टार डीलरशिप का अवार्ड भी इन्होंने विन किया है जेकर तुसी मर्सिडीज दे ब्रांड दे नाल जुड़ना है तो तुसी मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स वाले वड्डे शोरूम दे विच जा सकते हो जिथे 70-80 गड्डियां हर वेले अंदर ही खड़िया होंदिया ने जेकर तुसी कोई डील बनानी है तो उहदे विच तुहाडी मदद जिहड़ी है वह गौरव शर्मा करनगे गौरव शर्मा का फोन नंबर तुसी नोट कर लो जी 403-903-6757 403-903-6757 मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स मदर इंडिया रेस्टोरेंट जिहड़ा कि 24 घंटे ते 7 दिन खुला हुंदा सिटीस्केप लैंडिंग दे विच है जी मदर इंडिया रेस्टोरेंट इन्होंने भी इस प्रोग्राम दे विच साडा साथ दित्ता जेकर तुसी साउथ इंडियन फूड या नॉर्थ इंडियन फूड खाना चाहते हो तो इत्थे गुड क्वालिटी का फूड तुसी खा सकते हो 40 तो वध तुहाडे मेहमानां नूं सांभण दा उन्हां दी सेवा करन लई वी इन्हां कोल वधिया जिहड़ा प्रबंध है इसलिए जेकर तुसी देसी घिओ वालियां दालां सब्जियां खाना चाहते हो चंगा फूड खाना चाहते हो डाइन इन टेकआउट ते डिलीवरी लई तुसी इन्हां नूं कॉन्टैक्ट कर सकते हो 403-936-7777 403-936-7777 मदर इंडिया रेस्टोरेंट प्रोग्राम के अगले स्पॉन्सर पिक्सल फोटो स्टूडियो सवाना बाजार नॉर्थ ईस्ट दे विच है जी पिक्सल फोटो स्टूडियो सवाना वाली रजिस्ट्री के बिल्कुल लागे खास गल यह है कि जेकर थोनू गवर्नमेंट आई डी लई पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए ने तो 2 फोटो सिर्फ 7 डॉलर के बना के देंगे ने इस करके तुसी इन्हां नूं संपर्क कर सकते हो फैमिली फोटोज़ लई भी जेकर तुसी अपने बच्चियां दीयां फोटोज़ करवाउणी है जां पोर्ट्रेट्स बनाउणे आ जां तुहाडे घर कोई विआह शादी है कोई इवेंट है कोई बर्थडे पार्टी है तुसी कवरेज करवाउणी है फोटोआं वधिया वधिया खिचाउणियां ने तां तुसी सवाना बाजार दे विच पिक्सल फोटो स्टूडियो विजिट कर लो जां फिर इन्हां नूं कॉल कर लो 403-947-0060 ते 403-947-0060 पिक्सल फोटो स्टूडियो

0: नाल काम कर दे जग्गी टिलो नाल एक बार जरूर गल बात करो। जग्गी टिलो दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445।
1: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फेर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
4: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा, कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे।
3: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
5: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूविंग।